0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा। मंदिर से जाने के बाद लोगों ने उनका आचरण भुला दिया। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य इसलिए अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं यह जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा। वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 9 से लेकर 13 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। वस्तुतः उपदेशक ग्रंथ के उक्त पद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सत्ता या ताकत का अनुचित लाभ उठाने वालों को ये पद फटकार बताते हैं। फिर यह प्रकाशित करते हैं कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने के कारण ही हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब दुष्ट को कुछ समय के लिए सजा नहीं मिलती तो बुराई करने की उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। आज भी यह कोई नई बात नहीं है। कई स्थलों पर, विशेष रूप से सरकारी दफ्तरों में, यही देखने को मिलता है। आज भी विश्व के कई हिस्सों में शासक मनमानी कर रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। श्रोताओं, किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही एवं न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिलता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला माना जाता है। इसके विपरीत भले व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। वे उन ताकतवरों के राज में दुख उठाते हैं जो उन पर अधिकार जताते हैं। सताने वाले अपनी नफरत में और मजबूत होते जाते हैं, जबकि भले लोग दूसरों की दृष्टि में और नीचे गिर जाते हैं। अस्तु श्रोताओं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सुलेमान ने इस ना इंसाफी को व्यर्थ निरूपित किया। तथापि इसके बावजूद वह भरोसा दिलाता है। 8वें अध्याय के 13वें पद में कहता है, ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं।

तदुपरांत आठवें अध्याय के 14वें एवं 15वें पदों में उपदेशक कहता है, पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है, कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भोगना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। मैं कह चुका हूं यह भी व्यर्थ है, इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद के साथ रहे। श्रोताओ, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां राजा सुलेमान अनंत के दृष्टिकोण को भूल चुका था, या फिर अनंत में उसका विश्वास नहीं था। और फिर जिसे अनंत पर विश्वास नहीं, जिसे यह भरोसा नहीं कि धरती पर हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। और इसी पर विलाप करता है कि इस दुनिया के स्त्री पुरुषों को कष्ट क्यों कर भोगना पड़ता है। श्रोताओ, यह सवाल बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित अय्यूब के ग्रंथ का सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब लगभग नामुमकिन था। इसका जवाब तो बस उन्हीं को मिल सकता है जो अनंत जीवन में विश्वास करते हुए इस जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार निभाते हैं। उपदेशक यह भी कहता है कि कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। सवाल करता है कि बुरे कर्म करने वाले खुश क्यों रहते हैं, उन पर आशीर्वाद क्यों बरसता रहता है, नाकाबिल लोगों के साथ अच्छाई क्यों दिखाई जाती है। और इन्हीं सवालों की मजबूती उसे यह कहने पर मजबूर कर देती है कि जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। अस्तु परामर्श देता है कि जिंदगी के बुरे हालातों का भी मनुष्य सदुपयोग करे, परिश्रम करे और जीवन का आनंद उठाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। किंतु श्रोताओ, उपदेशक भूल गया था कि ऐसे सवालों का जवाब ईश्वर की दया पर निर्भर रहता है। ईश्वर दया सागर हैं, वे पापियों का बहिष्कार नहीं करते बल्कि उन्हें पुनः सत्य के रास्ते पर लौट आने का मौका देते हैं। आगे आठवें अध्याय के अंतिम यानी कि 16वें पद में उपदेशक कहता है, जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में बिल्कुल असमर्थ है। श्रोताओ, जिंदगी की बहुत अधिक भागदौड़ हमें यह पूछने पर मजबूर कर देती है कि यह भागदौड़ हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या मतलब है और इसका कोई मतलब है भी या नहीं। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, यह सवाल हमें पराजित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं किंतु जिस चीज की तलाश करते हैं वह हमें नहीं मिलती। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम खुश रहें, उसी में संतोष कर लें। कहता है, समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी भले ही यह दावा कर लें कि उन्हें सब कुछ आता है, कड़ी मेहनत से वे सब कुछ का ज्ञान हासिल कर चुके हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की योजना को समझने में वे असमर्थ ही रहेंगे। श्रोताओ, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की था तक पहुंचा सकते हैं, ईश्वर के रहस्य तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रता पूर्वक मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करे, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को पहचाने, ईश्वर की महिमा को पहचाने जो कि अपरम

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने बृहस्पतिवार को वैटिकन में कोलंबिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री गुस्तावो पेद्रो उरुग्वे से मुलाकात की। पोप से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेद्रो परोलिन एवं वैटिकन विदेश उप सचिव मोनसिनियोर दानियल पाको से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार वैटिकन राज्य सचिवालय में बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और वैटिकन एवं कोलंबिया के बीच अच्छे संबंधों पर संतोष जताया गया। बयान में बताया गया कि बातचीत के मुख्य मुद्दे शांति, मेल मिलाप एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में कलीसिया एवं राज्य के बीच सकारात्मक तथा लगातार सहयोग रहे। इसके अलावा बयान में आगे कहा गया कि बातचीत में कोलंबिया और क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें खासकर झगड़ों, अंतर्राष्ट्रीय सुनियोजित अपराध और जलवायु परिवर्तन के नतीजों पर ध्यान दिया गया। संचार विभाग के संपादकीय निदेशक ने रोम में लियो डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की है, जिसमें साक्षात्कार, संग्रहालय फुटेज एवं तस्वीर शामिल हैं। डॉक्यूमेंट्री को पत्रकार फादर फिलिप हेरेरा, सल्वातोरे चिनेत्सियो और तित्सियाना कंपीसी ने बनाया है और इसकी एडिटिंग जैमे विचकैनो हारो ने की है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस के द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज में 1 जुलाई को हुए धर्माध्यक्ष अभिषेक को एक फूट डालने वाला कृत्य बताया गया है और साथ ही एक व्याख्यात्मक टिप्पणी में धर्म से बहिष्कार की गंभीर कानूनी प्रतिबंध की जानकारी दी गई है। संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी के धर्माध्यक्षों अल्फोंसो दी गलारेता और बर्नार्ड फेले क्रमशः मुख्याभिषेककर्ता और सह अभिषेककर्ता एवं नव अभिषिक्त धर्माध्यक्ष पास्कल श्रेबर, माइकल गोल्दादे, मिशेल पोन्सनेट दी सिल्वी और मार्क हनापियर को इप्सो फक्तो स्वतः ही लाते सेंटेंस से सजा का सामना करना पड़ा है, जो परमधम पीठ के लिए आरक्षित है क्योंकि उन्होंने एक फूट डालने का काम किया है। 4 पुरोहितों का धर्माध्यक्ष अभिषेक परमधम पीठ के आदेश के बिना और सर्वोच्च अधिकारी पोप की इच्छा के विरुद्ध। यह बात 2 जुलाई को जारी एक आज्ञाप्ति में कही गई है, जिस पर विश्वास के धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने हस्ताक्षर किए हैं और उसी विभाग के 2 सचिवों के भी हस्ताक्षर हैं। यह फैसला 1 जुलाई 2026 की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में हुए अभिषेक समारोह के 24 घंटे बाद आया है। विश्वास के धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग की आज्ञाप्ति यह तय करती है कि अभिषेक में अभिषेककर्ता और अभिषेक पाने वाले दोनों ही तय बहिष्कार में शामिल हैं। यह दर्दनाक अंत लेफेब्रिटो के उस फैसले का नतीजा है जो उन्होंने पोप लियो 14वें की बार बार कही गई इच्छा के खिलाफ लिया है। इस बहिष्कार ने संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को रोम की कलीसिया से अलग कर दिया है। जहां तक लोक धर्मियों की बात है, जो लोग औपचारिक रूप से सोसाइटी के नियमों का पालन करते हैं उन्हें बहिष्कृत माना जाएगा। अधिक जानकारी एक व्याख्यात्मक टिप्पणी में दी गई है, जिसे धर्म से निकालने के आदेश के साथ ही विभाग ने प्रकाशित किया। संत पापा पॉल सिस्टम के समय से लेकर अभी के विभाग में हाल ही में हुई बातचीत तक महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्रे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के सदस्यों को कार्तिक कलीसिया के साथ पूरी तरह से जोड़ने की कई कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। यह स्थिति परमधम पीठ के आदेश के बिना पोप की इच्छा के विरुद्ध और कलीसियाई कानून का खुला उल्लंघन करके किए गए धर्माध्यक्ष अभिषेक से और भी खराब हो गई है। इसलिए यह विभाग उसे सौंपे गए कामों को ईमानदारी से करते हुए यह बताना जरूरी समझती है कि यह काम फूट का कारण बना, जिसके याचकों एवं इसमें शामिल लोक धर्मियों पर कानूनी नतीजे हुए। असल में जैसा कि 1988 में कहा जा चुका है, ऐसी अवज्ञा जिसका मतलब व्यवहारिक रूप से रोमी परमाध्यक्ष को नकारना है, एक फूट डालने वाला काम है। संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी से जुड़े पुरोहित कार्तिक धर्म से फूट में हैं
और इसलिए उन्हें धर्म से बहिष्कृत माना जाएगा। उन लोग धर्मियों के लिए जो औपचारिक रूप से संत पियूस दसवें के सोसाइटी के नियम का पालन करते हैं, उन्हें 1996 में विधायी दस्तावेज के लिए परम धर्म पीठ समिति के व्याख्यात्मक दस्तावेज में बताई गई शर्तों के तहत अलग माना जाएगा और उन्हें कलीसिया से निकाल दिया जाएगा, जो अब लागू हो चुका है। अंत में ईश्वर की पौत्र प्रजा को चेतावनी दी जाती है कि संत पियूस दसवें की याजक सोसाइटी के पुरोहितों और धर्माध्यक्षों द्वारा संस्कारों का अनुष्ठान अवैध है और उनके द्वारा दिए गए पाप स्वीकार संस्कार एवं शादी संस्कार अमान्य हैं। कलीसिया एक देखभाल करने वाली माँ की तरह है, उन सभी लोगों का सच्चे स्नेह एवं पूरी चिंता के साथ स्वागत करेगी जो कलीसिया के साथ पूर्ण एकता में रहना चाहते हैं। प्रेरितिक राजदूत उन प्रक्रियाओं का इंतजाम करेंगे जिनका इस्तेमाल धर्माध्यक्ष अलग अलग मामलों में कर सकते हैं। अंत में सभी विश्वासियों से कहा जाता है कि वे रोमी पोप, धर्माध्यक्षों और पूरी कलीसिया के साथ मजबूती से जुड़े रहें और संत पियूस दसवें के सोसाइटी द्वारा अर्पित पौत्र मिस्सा एवं अन्य क्रियाकलापों में हिस्सा लेने से बचें। संत पापा पॉल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की बड़ी कोशिशों एवं संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें द्वारा लगाए गए बहिष्कार को हटाने के फैसले और संत पापा फ्रांसिस द्वारा दी गई सुविधाओं एवं परमाध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ किए गए गैर कानूनी अभिषेक के बावजूद सोसाइटी एक बार फिर रोम से अलग हो गई। यह एक मुश्किल इतिहास है जो बड़ी कोशिशों, खुले दरवाजों और दिए गए मौकों से बना है। यह एक दर्दनाक इतिहास है जिसमें दो गंभीर दरारें आईं, जिनकी वजह से महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्र द्वारा बनाई गई संत पापा पियूस दसवें की आज के सोसाइटी ने खुद को संत पापा से और रोम की कलीसिया से अलग कर लिया है और बिना किसी परमाध्यक्ष आदेश के धर्माध्यक्षों का अभिषेक किया। पिछली 1 जनवरी को हुई दरार के गंभीर नतीजे न केवल महाधर्माध्यक्ष लेफेब्रे के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए बल्कि सभी विश्वासियों के लिए भी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा। मंदिर से जाने के बाद लोगों ने उनका आचरण भुला दिया। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य इसलिए अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं यह जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा। वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 9 से लेकर 13 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। वस्तुतः उपदेशक ग्रंथ के उक्त पद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सत्ता या ताकत का अनुचित लाभ उठाने वालों को ये पद फटकार बताते हैं। फिर यह प्रकाशित करते हैं कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने के कारण ही हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब दुष्ट को कुछ समय के लिए सजा नहीं मिलती तो बुराई करने की उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। आज भी यह कोई नई बात नहीं है। कई स्थलों पर, विशेष रूप से सरकारी दफ्तरों में, यही देखने को मिलता है। आज भी विश्व के कई हिस्सों में शासक मनमानी कर रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। श्रोताओं, किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही एवं न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिलता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला माना जाता है। इसके विपरीत भले व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। वे उन ताकतवरों के राज में दुख उठाते हैं जो उन पर अधिकार जताते हैं। सताने वाले अपनी नफरत में और मजबूत होते जाते हैं, जबकि भले लोग दूसरों की दृष्टि में और नीचे गिर जाते हैं। अस्तु श्रोताओं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सुलेमान ने इस ना इंसाफी को व्यर्थ निरूपित किया। तथापि इसके बावजूद वह भरोसा दिलाता है। 8वें अध्याय के 13वें पद में कहता है, ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं।

तदुपरांत आठवें अध्याय के 14वें एवं 15वें पदों में उपदेशक कहता है, पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है। कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भोगना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। मैं कह चुका हूं, यह भी व्यर्थ है। इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद के साथ रहे। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ राजा सुलेमान अनंत के दृष्टिकोण को भूल चुका था, या फिर अनंत में उसका विश्वास नहीं था। और फिर जिसे अनंत पर विश्वास नहीं, जिसे यह भरोसा नहीं कि धरती पर हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। और इसी पर विलाप करता है कि इस दुनिया के स्त्री पुरुषों को कष्ट क्यों कर भोगना पड़ता है। श्रोताओं, यह सवाल बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित अय्यूब के ग्रंथ का सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब लगभग नामुमकिन था। इसका जवाब तो बस उन्हीं को मिल सकता है जो अनंत जीवन में विश्वास करते हुए इस जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार निभाते हैं। उपदेशक यह भी कहता है कि कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। सवाल करता है कि बुरे कर्म करने वाले खुश क्यों रहते हैं, उन पर आशीर्वाद क्यों बरसता रहता है, नाकाबिल लोगों के साथ अच्छाई क्यों दिखाई जाती है। और इन्हीं सवालों की मजबूती उसे यह कहने पर मजबूर कर देती है कि जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। अस्तु परामर्श देता है कि जिंदगी के बुरे हालातों का भी मनुष्य सदुपयोग करे, परिश्रम करे और जीवन का आनंद उठाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। किंतु श्रोताओं, उपदेशक भूल गया था कि ऐसे सवालों का जवाब ईश्वर की दया पर निर्भर रहता है। ईश्वर दया सागर हैं, वे पापियों का बहिष्कार नहीं करते बल्कि उन्हें पुनः सत्य के रास्ते पर लौट आने का मौका देते हैं। आगे आठवें अध्याय के अंतिम यानी कि 16वें पद में उपदेशक कहता है, जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में बिल्कुल असमर्थ है। श्रोताओं, जिंदगी की बहुत अधिक भागदौड़ हमें यह पूछने पर मजबूर कर देती है कि यह भागदौड़ हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या मतलब है और इसका कोई मतलब है भी या नहीं। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, यह सवाल हमें पराजित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं किंतु जिस चीज की तलाश करते हैं वह हमें नहीं मिलती। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम खुश रहें, उसी में संतोष कर लें। कहता है, समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी भले ही यह दावा कर लें कि उन्हें सब कुछ आता है, कड़ी मेहनत से वे सब कुछ का ज्ञान हासिल कर चुके हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की योजना को समझने में वे असमर्थ ही रहेंगे। श्रोताओं, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की था तक पहुंचा सकते हैं, ईश्वर के रहस्य तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रतापूर्वक मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करे, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को पहचाने, ईश्वर की महिमा को पहचाने जो कि अपरम्पार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें ने बृहस्पतिवार को वैटिकन में कोलंबिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री गुस्तावो पेद्रो उरुगे से मुलाकात की। पोप से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेद्रो परोलिन एवं वैटिकन विदेश उप सचिव मोनसिनियोर दानियल पाको से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार वैटिकन राज्य सचिवालय में बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और वैटिकन एवं कोलंबिया के बीच अच्छे संबंधों पर संतोष जताया गया। बयान में बताया गया कि बातचीत के मुख्य मुद्दे शांति, मेल मिलाप एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में कलीसिया एवं राज्य के बीच सकारात्मक तथा लगातार सहयोग रहे। इसके अलावा बयान में आगे कहा गया कि बातचीत में कोलंबिया और क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें खासकर झगड़ों, अंतर्राष्ट्रीय सुनियोजित अपराध और जलवायु परिवर्तन के नतीजों पर ध्यान दिया गया। संचार विभाग के संपादकीय निदेशक ने रोम में लियो डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की है, जिसमें साक्षात्कार, संग्रहालय फुटेज एवं तस्वीर शामिल हैं। डॉक्यूमेंट्री को पत्रकार फादर फिलिप हेरेरा, सल्वातोरे चिनेत्सियो और तित्सियाना कंपीसी ने बनाया है और इसकी एडिटिंग जैमे विचकैनो हारो ने की है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस के द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज में 1 जुलाई को हुए धर्मदक्ष अभिषेक को एक फूट डालने वाला कृत्य बताया गया है और साथ ही एक व्याख्यात्मक टिप्पणी में धर्म से बहिष्कार की गंभीर कानूनी प्रतिबंध की जानकारी दी गई है। संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी के धर्माध्यक्षों अल्फोंसो दी गलारेता और बर्नार्ड फेले क्रमशः मुख्य अभिषेककर्ता और सह अभिषेककर्ता एवं नव अभिषिक्त धर्माध्यक्ष पास्कल श्रेबर, माइकल गोल्दादे, मिशेल पोइंसनेट दी सिल्वी और मार्क हनापियर को इप्सो फक्तो स्वतः ही लाते सेंटेंस से सजा का सामना करना पड़ा है, जो परमधम पीठ के लिए आरक्षित है क्योंकि उन्होंने एक फूट डालने का काम किया है। 4 पुरोहितों का धर्माध्यक्ष अभिषेक परमधम पीठ के आदेश के बिना और सर्वोच्च अधिकारी पोप की इच्छा के विरुद्ध। यह बात 2 जुलाई को जारी एक आज्ञाप्ति में कही गई है, जिस पर विश्वास के धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने हस्ताक्षर किए हैं और उसी विभाग के 2 सचिवों के भी हस्ताक्षर हैं। यह फैसला 1 जुलाई 2026 की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में हुए अभिषेक समारोह के 24 घंटे बाद आया है। विश्वास के धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग की आज्ञाप्ति यह तय करती है कि अभिषेक में अभिषेककर्ता और अभिषेक पाने वाले दोनों ही तय बहिष्कार में शामिल हैं। यह दर्दनाक अंत लेफेब्रिटो के उस फैसले का नतीजा है जो उन्होंने पोप लियो 14वें की बार बार कही गई इच्छा के खिलाफ लिया है। इस बहिष्कार ने संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को रोम की कलीसिया से अलग कर दिया है। जहां तक लोक धर्मियों की बात है, जो लोग औपचारिक रूप से सोसाइटी के नियमों का पालन करते हैं उन्हें बहिष्कृत माना जाएगा। अधिक जानकारी एक व्याख्यात्मक टिप्पणी में दी गई है, जिसे धर्म से निकालने के आदेश के साथ ही विभाग ने प्रकाशित किया। संत पापा पॉल सिस्टम के समय से लेकर अभी के विभाग में हाल ही में हुई बातचीत तक महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्रे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के सदस्यों को कार्तिक कलीसिया के साथ पूरी तरह से जोड़ने की कई कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। यह स्थिति परमधम पीठ के आदेश के बिना पोप की इच्छा के विरुद्ध और कलीसियाई कानून का खुला उल्लंघन करके किए गए धर्माध्यक्ष अभिषेक से और भी खराब हो गई है। इसलिए यह विभाग उसे सौंपे गए कामों को ईमानदारी से करते हुए यह बताना जरूरी समझती है कि यह काम फूट का कारण बना, जिसके याचकों एवं इसमें शामिल लोक धर्मियों पर कानूनी नतीजे हुए। असल में जैसा कि 1988 में कहा जा चुका है, ऐसी अवज्ञा जिसका मतलब व्यवहारिक रूप से रोमी परमाध्यक्ष को नकारना है, एक फूट डालने वाला काम है। संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी से जुड़े पुरोहित कार्तिक धर्म से फूट में हैं
और इसलिए उन्हें धर्म से बहिष्कृत माना जाएगा। उन लोग धर्मियों के लिए जो औपचारिक रूप से संत पियूस दसवें के सोसाइटी के नियम का पालन करते हैं, उन्हें 1996 में विधायी दस्तावेज के लिए परम धर्म पीठ समिति के व्याख्यात्मक दस्तावेज में बताई गई शर्तों के तहत अलग माना जाएगा और उन्हें कलीसिया से निकाल दिया जाएगा, जो अब लागू हो चुका है। अंत में ईश्वर की पौत्र प्रजा को चेतावनी दी जाती है कि संत पियूस दसवें की याजकीय सोसाइटी के पुरोहितों और धर्माध्यक्षों द्वारा संस्कारों का अनुष्ठान अवैध है और उनके द्वारा दिए गए पाप स्वीकार संस्कार एवं शादी संस्कार अमान्य हैं। कलीसिया एक देखभाल करने वाली माँ की तरह है, उन सभी लोगों का सच्चे स्नेह एवं पूरी चिंता के साथ स्वागत करेगी जो कलीसिया के साथ पूर्ण एकता में रहना चाहते हैं। प्रेरितिक राजदूत उन प्रक्रियाओं का इंतजाम करेंगे जिनका इस्तेमाल धर्माध्यक्ष अलग अलग मामलों में कर सकते हैं। अंत में सभी विश्वासियों से कहा जाता है कि वे रोमी पोप, धर्माध्यक्षों और पूरी कलीसिया के साथ मजबूती से जुड़े रहें और संत पियूस दसवें के सोसाइटी द्वारा अर्पित पौत्र मिस्सा एवं अन्य क्रियाकलापों में हिस्सा लेने से बचें। संत पापा पॉल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की बड़ी कोशिशों एवं संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें द्वारा लगाए गए बहिष्कार को हटाने के फैसले और संत पापा फ्रांसिस द्वारा दी गई सुविधाओं एवं परमाध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ किए गए गैर कानूनी अभिषेक के बावजूद सोसाइटी एक बार फिर रोम से अलग हो गई। यह एक मुश्किल इतिहास है जो बड़ी कोशिशों, खुले दरवाजों और दिए गए मौकों से बना है। यह एक दर्दनाक इतिहास है जिसमें दो गंभीर दरारें आईं, जिनकी वजह से महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्रे द्वारा बनाई गई संत पापा पियूस दसवें की आज के सोसाइटी ने खुद को संत पापा से और रोम की कलीसिया से अलग कर लिया है और बिना किसी परमाध्यक्ष आदेश के धर्माध्यक्षों का अभिषेक किया। पिछली 1 जनवरी को हुई दरार के गंभीर नतीजे न केवल महाधर्माध्यक्ष लेफेब्रे के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए बल्कि सभी विश्वासियों के लिए भी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: धर्म और दुखों का न्याय करने फिर आएंगे।
1: मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
2: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब, हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी।

हमारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, वेनेजुएला में गुरुवार 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों से जान माल की भीषण हानि हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रभावित आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं। वेनेजुएला के अधिकारियों ने सोमवार 1 जुलाई को बताया कि भूकंप से कम 1,719 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 5,000 लोग घायल हुए हैं, साथ ही लगभग 12,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि लापता लोगों की संख्या की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूकंपों से 7 राज्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन हताहतों की सबसे अधिक संख्या लागोएरा राज्य और काराकास जिले में हो रही है। लगभग 2,500 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से ढह गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में हालात अब भी खतरनाक बने हुए हैं। शुरुआती भूकंपों के बाद से लगभग 500 भूकंप पश्चात झटके दर्ज किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: वेनेजुएला में 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों से जान माल की भीषण हानि हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रभावित आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। राजधानी कराकस समेत अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर इमारतों व बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है और मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। रिक्टर पैमाने पर इन भूकंपों की तीव्रता क्रमशः 7.2 और 7.5 आंकी गई है, जिसके बाद देश में फिलहाल आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। वेनेजुएला के विभिन्न हिस्सों में अग्रिम पंक्ति के राहत कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। दुनिया भर से देशों ने मदद का प्रस्ताव दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता का पहुंचाना शुरू हो गया है।
4: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का कहना है कि जीवन रक्षक चिकित्सा देखभाल और दवाओं की भी आवश्यकता है, विशेष रूप से शुरुआती कुछ दिनों में, जिससे

0: लोगों के जीवन को बचाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि चिकित्सा कर्मियों पर यह तय करने का दबाव है कि किन घायलों का इलाज किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य आवश्यकताएं उपजी हैं। मानवीय सहायता एजेंसियों के अनुसार ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब देश पहले से ही एक नाजुक मानवीय स्थिति से जूझ रहा है। लंबे समय से जारी आर्थिक संकट और मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की वजह से लाखों नागरिक अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने बताया कि मध्य पूर्व संकट की वजह से फारस की खाड़ी में फंसे हुए 2,500 समुद्री नाविकों को हाल के दिनों में सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिली है। समुद्री नाविकों को इस जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने की योजना मध्य पूर्व में भड़के टकराव पर विराम लगाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता से जुड़ी है। इस सिलसिले में पिछले सप्ताह ही दोनों देशों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच वार्ता यदि सफल हुई तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही 28 फरवरी को भड़के युद्ध से पहले के स्तर पर वापिस पहुँचने की उम्मीद है। उस समय हर दिन यहाँ से लगभग 130 जहाज गुजरते थे, मगर लड़ाई के दौरान उनकी रफ्तार लगभग पूरी तरह से ठप हो गई। लगातार अपेक्षाकृत सुधार है, लेकिन अब भी पिछले 3 दिनों के दौरान 20 से 30 जहाज ही गुजर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
0: UN एजेंसी के अनुसार बचाव अभियान शुरू होने के पहले 3 दिनों के भीतर 115 जहाजों में सवार नाविक दल के 2,500 सदस्यों को इस जल क्षेत्र से बाहर लाया गया। समुद्री मामलों के लिए UN एजेंसी की अगुवाई में ये बचाव अभियान संचालित किया जा रहा था, लेकिन गुरुवार को ओमान के तट के नजदीक एक जहाज पर हमला होने के बाद इन प्रयासों को रोकना पड़ा है। जहाजों की आवाजाही में भीषण गिरावट आने का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया था। तेल, गैस, उर्वरक समेत अन्य अहम सामग्री की आपूर्ति में व्यवधान आया, जिसके प्रभाव लंबे समय तक जारी रह सकते हैं।
1: दुनिया भर में ताप लहरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार यूरोप इस समय भीषण गर्मी की अभूतपूर्व लहर की चपेट में है। फ्रांस और स्पेन ने जून महीने के सबसे गर्म दिनों का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों में रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आगाह किया है कि अगले 2 सप्ताह तक तापमान सामान्य से 3 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जिससे गर्मी का दबाव, जंगलों में आग, सूखे और चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। गर्मी ऐसा कि बाहर निकलना मुश्किल और घर के अंदर रहना भी बेहाल है। ऐसे में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसके लिए कुछ आसान उपाय सुझाए हैं। इसके बारे में बता रही हैं अंशु शर्मा।
2: अगर गर्मी ने आपको भी बेहाल कर रखा है तो कुछ छोटे और आसान एहतियाती कदम झुलसते मौसम में खुद को और अपने घर को ठंडा व सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम के पूर्वानुमान और ताप लहर की चेतावनियों पर नजर रखें। घर में पर्याप्त पानी और जरूरी दवाएं रखें और जांच लें कि पंखे व अन्य उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। दिन में धूप वाली खिड़कियों के पर्दे बंद रखें। रात में तापमान घटे तो आमने सामने की खिड़कियां खोलकर घर में जमा गर्मी बाहर निकालें। एयर कंडीशनर के बिना भी ठंडक बनाए रखी जा सकती है, जैसे कि पंखे बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। गीली खस की चटाइयां, छाया और हवा की आर पार आवाजाही भी घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करती हैं। प्यास लगने का इंतजार न करें, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, हल्का भोजन करें और दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें। चक्कर, सिरदर्द, मितली या बहुत अधिक पसीना आए तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं, आराम करें और पानी पिएं। बेहोशी, भ्रम या शरीर का तापमान बढ़ना लू लगने का संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता लें। और सबसे अहम, बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अकेले रहने वाले लोगों का हालचाल जरूर पूछें। ताप लहर के दौरान आपकी एक फोन कॉल भी किसी की जान बचा सकती है।
1: पूरी तरह से चालक रहित कार चलाने के लिए स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के लिए पहली बार एक नियम व्यवस्था तय की गई है। यूरोप में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग ने वाहनों में स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मंजूरी दे दी है, जिससे चालक रहित वाहनों के लिए रास्ता साफ हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
3: जरा कल्पना करें कि हमें कार से एक या दो घंटे का सफर तय करके कहीं जाना है और वो कार स्वतः चलेगी, यानी उसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। तो हम कार की सीट को बिस्तर बनाकर आराम से सो जाएं, कार मंजिल पर पहुंचकर हमें जगा दे और बस सफर पूरा। ये अब कोई कल्पना भर की बात नहीं, बल्कि कुछ ही महीनों में वास्तविकता बनने जा रही है। अनेक देशों में पहले ही इन स्वचालित वाहनों को परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है। उन्हें सड़कों पर चलाने के लिए नियम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्वचालित वाहन कड़े सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें, जिससे देशों की सरकारों, उद्योग जगत और आम लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। ये नियामक ढांचा वाहन निर्माताओं को अलग अलग देशों में बिखरे हुए नियमों की स्थिति से बचाते हुए स्पष्ट दिशा, उपभोक्ताओं को अधिक भरोसा और विभिन्न बाजारों में सुरक्षित ढंग से नवाचार को विस्तार देने का मार्ग मुहैया कराता है।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने जुलाई माह की प्रार्थना की प्रेरिताई में विश्वासियों को मानव जीवन के सम्मान के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है, ताकि सभी हर इंसान की अनोखी और विशिष्ट कीमत को पहचान सकें और उसकी रक्षा कर सकें। उन्होंने गुरुवार को प्रे विद द पोप वीडियो जारी किया, जिसे संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में संत पापा ने माना कि ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को प्यार से बनाया है और हमें पूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है। संत पापा ने कहा, हर इंसान एक पवित्र वरदान है जो ईश्वर के चेहरे को दिखाता है। अस्तित्व के पहले पल से लेकर धरती पर उनके सफर के आखिरी सांस तक, आज हम हर इंसान की अनोखी और कभी न दोहराई जा सकने वाली कीमत को पहचानने और उसकी रक्षा करने की कृपा मांगते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम बिना किसी शर्त के जीवन का स्वागत करना, नाजुक चीजों का प्यार से ख्याल रखना, हर मोड़ पर सम्मान से साथ देना और उन लोगों का साहस के साथ बचाव करना सीखना जिनकी कोई आवाज नहीं है। संत पापा लियो ने प्रभु से कहा कि जब हम उदासीनता या छोड़ देने की सोच में पड़ जाते हैं और जब हम दूसरों में प्यार के लायक इंसान नहीं देख पाते, तो हमें माफ कर दें। उन्होंने कहा, हमें एक नया दिल दे जो हमेशा जीवन चुनने के लिए तैयार हो और ऐसे उदार हाथ दे जो ठोस कामों से उनकी रक्षा करें। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु अपनी कलीसिया को जीवन के सुसमाचार का जीता जागता गवाह बनने में मदद करें। एक खुला घर जहां हर जीवन के लिए खुशी मनाई जाती है, जहां कोई भी खुद को अनचाहा महसूस नहीं करता और जहां इज्जत की हमेशा सम्मान और रक्षा की जाती है। और शनिवार 4 जुलाई को संत पापा लियो 14वें का लंपेदूसा का दौरा संत पापा फ्रांसिस के खोले गए रास्ते को आगे बढ़ाने वाला है। 2013 में संत पापा फ्रांसिस की पहली प्रेरितिक यात्रा ने इस छोटे से भूमध्य सागरीय द्वीप को प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ एकजुटता का एक वैश्विक प्रतीक बना दिया था। उस ऐतिहासिक दौरे में संत पापा फ्रांसिस ने उदासीनता के भूमंडलीकरण की निंदा की थी और एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज भी जोर से गूंजता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? जेसुइट प्रवासी सेवा JRS के अंतर्राष्ट्रीय वकालत की सलाहकार अमाया के लिए द्वीप में संत पापा लियो की मौजूदगी एक अहम समय पर हुई है और यह एक ऐसा संदेश देती है जो इंसान को केंद्र में रखता है। वे कहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि संत पापा लियो के दिल में शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए एक खास जगह है। वे बताती हैं कि संत पापा हमेशा गरीबों, कमजोर और बहिष्कृत लोगों को सुसमाचार संदेश के खास पाने वालों के तौर पर देखते हैं और लंपेदूसा के दौरे को उस यकीन का एक ठोस सबूत मानते हैं। वे यह भी बताती हैं कि उन्होंने हाल ही में शरणार्थियों के स्टेटस से जुड़े 1951 के सम्मेलन की 75वीं सालगिरह मनाई है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौता की हमेशा रहने वाली अहमियत पर सोचा है, ताकि शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और जो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जा सके। उनका मानना है कि संत पापा का संदेश लोगों को सीमा पर होने वाली रोकी जा सकने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेने और दुख झेलने वालों के साथ रोने की क्षमता वापस लाने के लिए लगातार कहता रहता है। वे बताती हैं कि संत पापा बार बार उन देशों और संकटों की ओर ध्यान दिलाते हैं जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक से गायब हो जाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में म्यांमार और सूडान जैसी जगहों को लगातार याद करते हैं और दुनिया को उन बेगुनाह पीड़ितों की याद दिलाते हैं जिनकी तकलीफ को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उधर इस सप्ताहांत अमेरिका में हर जगह पटाखे, हॉट डॉग और देशभक्ति के गाने बजेंगे, क्योंकि देश अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह मना रहा है। लेकिन इन सभी समारोहों के बीच एक पुरोहित प्रार्थना और एकता पर ध्यान दे रहे हैं। विस्कोंसिन में चैंपियन की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रेक्टर फादर अंतोनी स्टीफेंस CPM ने देशवासियों के लिए एक नोबीना लिखा, 9 दिन 1 से 9 जुलाई अमेरिका के लिए प्रार्थना करने और पूरे देश में एकता, पवित्रता और नवीनता के लिए माता मरियम से दुआ मांगने के लिए है। 50 लाख से ज्यादा प्रार्थना कार्ड छप चुके हैं और लेख लिखे जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय तीर्थालय अमेरिका के संतों, धन्य और आदरणीय एवं ईश सेवकों को समर्पित एक खास प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहा है। अमेरिका में पहली और एकमात्र स्वीकृत मरियम के दर्शन स्थल चैंपियन की माता मरियम का राष्ट्रीय तीर्थ स्थल अमेरिका के कैथोलिक संतों की प्रदर्शनी की जगह है। फादर स्टीफेंस ने बताया कि तीर्थालय सच में भक्तों के बीच भक्ति को बढ़ावा देने की जगह है। और विश्व खाद्य क्रम WFP ने नाइजीरिया में तेजी से बिगड़ती खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जताई है। हिंसा से प्रभावित 9 उत्तरी राज्यों में 17 मिलियन से ज्यादा लोग खाद्य संकट, आपातकाल या बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। 3 उत्तरी पूर्वी राज्यों में गंभीर खाद्य असुरक्षा वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6.2 मिलियन हो गई है, लेकिन WFP अभी सिर्फ 7,40,000 लोगों की मदद कर पा रहा है, जिससे लगभग 5.5 मिलियन लोग, खासकर बच्चे, जीवन रक्षक भोजन और पोषण सहायता के बिना रह गए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, वेनेजुएला में गुरुवार 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों से जान माल की भीषण हानि हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रभावित आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं। वेनेजुएला के अधिकारियों ने सोमवार 1 जुलाई को बताया कि भूकंप से कम 1,719 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 5,000 लोग घायल हुए हैं, साथ ही लगभग 12,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि लापता लोगों की संख्या की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूकंपों से 7 राज्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन हताहतों की सबसे अधिक संख्या लागोयरा राज्य और काराकास जिले में हो रही है। लगभग 2,500 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से ढह गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में हालात अब भी खतरनाक बने हुए हैं। शुरुआती भूकंपों के बाद से लगभग 500 भूकंप पश्चात झटके दर्ज किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूजा यादव और सचिन गौड़।
3: वेनेजुएला में 25 जून को आए दो शक्तिशाली भूकंपों से जान माल की भीषण हानि हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां प्रभावित आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। राजधानी कराकस समेत अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर इमारतों व बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है और मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। रिक्टर पैमाने पर इन भूकंपों की तीव्रता क्रमशः 7.2 और 7.5 आंकी गई है, जिसके बाद देश में फिलहाल आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। वेनेजुएला के विभिन्न हिस्सों में अग्रिम पंक्ति के राहत कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। दुनिया भर से देशों ने मदद का प्रस्ताव दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता का पहुंचाना शुरू हो गया है।
4: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का कहना है कि जीवन रक्षक चिकित्सा देखभाल और दवाओं की भी आवश्यकता है, विशेष रूप से शुरुआती कुछ दिनों में, जिससे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि चिकित्सा कर्मियों पर ये तय करने का दबाव है कि किन घायलों का इलाज किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य आवश्यकताएं उपजी हैं। मानवीय सहायता एजेंसियों के अनुसार ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब देश पहले से ही एक नाजुक मानवीय स्थिति से जूझ रहा है। लंबे समय से जारी आर्थिक संकट और मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की वजह से लाखों नागरिक अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने बताया कि मध्य पूर्व संकट की वजह से फारस की खाड़ी में फंसे हुए 2,500 समुद्री नाविकों को हाल के दिनों में सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिली है। समुद्री नाविकों को इस जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने की योजना मध्य पूर्व में भड़के टकराव पर विराम लगाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता से जुड़ी है। इस सिलसिले में पिछले सप्ताह ही दोनों देशों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच वार्ता यदि सफल हुई तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही 28 फरवरी को भड़के युद्ध से पहले के स्तर पर वापस पहुंचने की उम्मीद है। उस समय हर दिन यहाँ से लगभग 130 जहाज गुजरते थे, मगर लड़ाई के दौरान उनकी रफ्तार लगभग पूरी तरह से ठप हो गई। लगातार अपेक्षाकृत सुधार है, लेकिन अब भी पिछले 3 दिनों के दौरान 20 से 30 जहाज ही गुजर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
4: यूएन एजेंसी के अनुसार बचाव अभियान शुरू होने के पहले 3 दिनों के भीतर 115 जहाजों में सवार नाविक दल के 2500 सदस्यों को इस जल क्षेत्र से बाहर लाया गया। समुद्री मामलों के लिए यूएन एजेंसी की अगुवाई में ये बचाव अभियान संचालित किया जा रहा था, लेकिन गुरुवार को ओमान के तट के नजदीक एक जहाज पर हमला होने के बाद इन प्रयासों को रोकना पड़ा है। जहाजों की आवाजाही में भीषण गिरावट आने का असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया था। तेल, गैस, उर्वरक समेत अन्य अहम सामग्री की आपूर्ति में व्यवधान आया, जिसके प्रभाव लंबे समय तक जारी रह सकते हैं।
2: दुनिया भर में ताप लहरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार यूरोप इस समय भीषण गर्मी की अभूतपूर्व लहर की चपेट में है। फ्रांस और स्पेन ने जून महीने के सबसे गर्म दिनों का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों में रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आगाह किया है कि अगले 2 सप्ताह तक तापमान सामान्य से 3 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है, जिससे गर्मी का दबाव, जंगलों में आग, सूखे और चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। गर्मी ऐसा कि बाहर निकलना मुश्किल और घर के अंदर रहना भी बेहाल है। ऐसे में खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसके लिए कुछ आसान उपाय सुझाए हैं। इसके बारे में बता रही हैं अंशु शर्मा।
5: अगर गर्मी ने आपको भी बेहाल कर रखा है तो कुछ छोटे और आसान एहतियाती कदम झुलसते मौसम में खुद को और अपने घर को ठंडा व सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम के पूर्वानुमान और ताप लहर की चेतावनियों पर नजर रखें। घर में पर्याप्त पानी और जरूरी दवाएं रखें और जांच लें कि पंखे व अन्य उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। दिन में धूप वाली खिड़कियों के पर्दे बंद रखें। रात में तापमान घटे तो आमने सामने की खिड़कियां खोलकर घर में जमा गर्मी बाहर निकालें। एयर कंडीशनर के बिना भी ठंडक बनाए रखी जा सकती है, जैसे कि पंखे बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। गीली खस की चटाइयां, छाया और हवा की आर पार आवाजाही भी घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करती हैं। प्यास लगने का इंतजार ना करें, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, हल्का भोजन करें और दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें। चक्कर, सिरदर्द, मितली या बहुत अधिक पसीना आए तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं, आराम करें और पानी पिएं। बेहोशी, भ्रम या शरीर का तापमान बढ़ना लू लगने का संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता लें। और सबसे अहम, बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अकेले रहने वाले लोगों का हालचाल जरूर पूछें। ताप लहर के दौरान आपकी एक फोन कॉल भी किसी की जान बचा सकती है।
2: पूरी तरह से चालक रहित कार चलाने के लिए स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के लिए पहली बार एक नियम व्यवस्था तय की गई है। यूरोप में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग ने वाहनों में स्वचालित ड्राइविंग तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मंजूरी दे दी है, जिससे चालक रहित वाहनों के लिए रास्ता साफ हो गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
6: जरा कल्पना करें कि हमें कार से 1 या 2 घंटे का सफर तय करके कहीं जाना है और वो कार स्वतः चलेगी, यानी उसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। तो हम कार की सीट को बिस्तर बनाकर आराम से सो जाएं, कार मंजिल पर पहुंचकर हमें जगा दे और बस सफर पूरा। ये अब कोई कल्पना भर की बात नहीं, बल्कि कुछ ही महीनों में वास्तविकता बनने जा रही है। अनेक देशों में पहले ही इन स्वचालित वाहनों को परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है। उन्हें सड़कों पर चलाने के लिए नियम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्वचालित वाहन कड़े सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें, जिससे देशों की सरकारों, उद्योग जगत और आम लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। ये नियामक ढांचा वाहन निर्माताओं को अलग अलग देशों में बिखरे हुए नियमों की स्थिति से बचाते हुए स्पष्ट दिशा, उपभोक्ताओं को अधिक भरोसा और विभिन्न बाजारों में सुरक्षित ढंग से नवाचार को विस्तार देने का मार्ग मुहैया कराता है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने जुलाई माह की प्रार्थना की प्रेरिताई में विश्वासियों को मानव जीवन के सम्मान के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया है, ताकि सभी हर इंसान की अनोखी और विशिष्ट कीमत को पहचान सकें और उसकी रक्षा कर सकें। उन्होंने गुरुवार को प्रे विद द पोप वीडियो जारी किया, जिसे संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में संत पापा ने माना कि ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को प्यार से बनाया है और हमें पूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है। संत पापा ने कहा, हर इंसान एक पवित्र वरदान है जो ईश्वर के चेहरे को दिखाता है। अस्तित्व के पहले पल से लेकर धरती पर उनके सफर के आखिरी सांस तक, आज हम हर इंसान की अनोखी और कभी न दोहराई जा सकने वाली कीमत को पहचानने और उसकी रक्षा करने की कृपा मांगते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम बिना किसी शर्त के जीवन का स्वागत करना, नाजुक चीजों का प्यार से ख्याल रखना, हर मोड़ पर सम्मान से साथ देना और उन लोगों का साहस के साथ बचाव करना सीखना जिनकी कोई आवाज नहीं है। संत पापा लियो ने प्रभु से कहा कि जब हम उदासीनता या छोड़ देने की सोच में पड़ जाते हैं और जब हम दूसरों में प्यार के लायक इंसान नहीं देख पाते, तो हमें माफ कर दें। उन्होंने कहा, हमें एक नया दिल दे जो हमेशा जीवन चुनने के लिए तैयार हो और ऐसे उदार हाथ दे जो ठोस कामों से उनकी रक्षा करें। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु अपनी कलीसिया को जीवन के सुसमाचार का जीता जागता गवाह बनने में मदद करें, एक खुला घर जहां हर जीवन के लिए खुशी मनाई जाती है, जहां कोई भी खुद को अनचाहा महसूस नहीं करता और जहां इज्जत की हमेशा सम्मान और रक्षा की जाती है। और शनिवार 4 जुलाई को संत पापा लियो 14वें का लंपेदूसा का दौरा संत पापा फ्रांसिस के खोले गए रास्ते को आगे बढ़ाने वाला है। 2013 में संत पापा फ्रांसिस की पहली प्रेरितिक यात्रा ने इस छोटे से भूमध्य सागरीय द्वीप को प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ एकजुटता का एक वैश्विक प्रतीक बना दिया था। उस ऐतिहासिक दौरे में संत पापा फ्रांसिस ने उदासीनता के भूमंडलीकरण की निंदा की थी और एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज भी जोर से गूंजता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? जेस्विट प्रवासी सेवा JRS के अंतर्राष्ट्रीय वकालत की सलाहकार अमाया के लिए द्वीप में संत पापा लियो की मौजूदगी एक अहम समय पर हुई है और यह एक ऐसा संदेश देती है जो इंसान को केंद्र में रखता है। वे कहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि संत पापा लियो के दिल में शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए एक खास जगह है। वे बताती हैं कि संत पापा हमेशा गरीबों, कमजोर और बहिष्कृत लोगों को सुसमाचार संदेश के खास पाने वालों के तौर पर देखते हैं और लंपेदूसा के दौरे को उस यकीन का एक ठोस सबूत मानते हैं। वे यह भी बताती हैं कि उन्होंने हाल ही में शरणार्थियों के स्टेटस से जुड़े 1951 के सम्मेलन की 75वीं सालगिरह मनाई है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौता की हमेशा रहने वाली अहमियत पर सोचा है, ताकि शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और जो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जा सके। उनका मानना है कि संत पापा का संदेश लोगों को सीमा पर होने वाली रोकी जा सकने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेने और दुख झेलने वालों के साथ रोने की क्षमता वापस लाने के लिए लगातार कहता रहता है। वे बताती हैं कि संत पापा बार बार उन देशों और संकटों की ओर ध्यान दिलाते हैं जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक से गायब हो जाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में म्यांमार और सूडान जैसी जगहों को लगातार याद करते हैं और दुनिया को उन बेगुनाह पीड़ितों की याद दिलाते हैं जिनकी तकलीफ को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उधर इस सप्ताहांत अमेरिका में हर जगह पटाखे, हॉट डॉग और देशभक्ति के गाने बजेंगे, क्योंकि देश अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह मना रहा है। लेकिन इन सभी समारोहों के बीच एक पुरोहित प्रार्थना और एकता पर ध्यान दे रहे हैं। विस्कोंसिन में चैंपियन की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रेक्टर फादर अंतोनी स्टीफेंस CPM ने देशवासियों के लिए एक नोबीना लिखा, 9 दिन 1 से 9 जुलाई अमेरिका के लिए प्रार्थना करने और पूरे देश में एकता, पवित्रता और नवीनता के लिए माता मरियम से दुआ मांगने के लिए है। 50 लाख से ज्यादा प्रार्थना कार्ड छप चुके हैं और लेख लिखे जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय तीर्थालय अमेरिका के संतों, धन्य और आदरणीय एवं इस सेवकों को समर्पित एक खास प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहा है। अमेरिका में पहली और एकमात्र स्वीकृत मरियम के दर्शन स्थल चैंपियन की माता मरियम का राष्ट्रीय तीर्थ स्थल अमेरिका के कैथोलिक संतों की प्रदर्शनी की जगह है। फादर स्टीफेंस ने बताया कि तीर्थालय सच में भक्तों के बीच भक्ति को बढ़ावा देने की जगह है। और विश्व खाद्य क्रम WFP ने नाइजीरिया में तेजी से बिगड़ती खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर चिंता जताई है। हिंसा से प्रभावित 9 उत्तरी राज्यों में 17 मिलियन से ज्यादा लोग खाद्य संकट, आपातकाल या बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। 3 उत्तरी पूर्वी राज्यों में गंभीर खाद्य असुरक्षा वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6.2 मिलियन हो गई है, लेकिन WFP अभी सिर्फ 7,40,000 लोगों की मदद कर पा रहा है, जिससे लगभग 5.5 मिलियन लोग, खासकर बच्चे, जीवन रक्षक भोजन और पोषण सहायता के बिना रह गए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।